मैं कसक का एंजॉय किया आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड मैं यही कह रहा था कि यू नो इट्स लाइक मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इस मौसम में ना यू नो भक्तिमय मौसम माहौल हो चुका है। एंड ये भक्तिमय माहौल में जो सादगी है वो बरकरार रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ये दिन होते हैं भक्ति में डूब जाने के, भाव में डूब जाने के, एंड यू नो गणपति पापा के भक्ति में तल्लीन हो के जो मज़ा आता है वो तो इज़ नथिंग इज़ लाइक दैट, लाइक बापा इज़ बापा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इंडिया में तो डीजेज पे बहुत जगहों पे बैन कर रखा है, एंड ये करना भी चाहिए था क्योंकि यू नो इट्स लाइक डीजे के साउंड में बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती है। इससे बेटर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट मृदंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेटर रहता है, ऐसा मुझे लगता है।

कैसे कहा है, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स। एंड एक अच्छी खबर सांस्कृतिक जगत से है। डाउनटाउन रैली में मशहूर हॉपस्कॉच म्यूजिक फेस्टिवल की धूम है। इस इवेंट की वजह से शहर में भारी भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग संगीत का सुरक्षित आनंद ले पाए। ये फेस्टिवल काफ़ी अच्छा है, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप ये फेस्टिवल में जा सकते हैं और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं इस फेस्टिवल की वाइब। फिलहाल वाइब तो चल रही है गणेश उत्सव की, एंड इस कदर वाइब चल रही है कि क्या मैं बताऊँ, एंड यू नो मजा ही मजा है ना। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, कहिए जाइएगा मत। रेडियो नायरा, पक्का देसी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायर अपन निर्वाणा नाइट्स एंड नॉर्थ कैरोलिना के एक नए बजट में वेक काउंटी को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो सामने आया है। एक ताज़ा सरकारी मामले में ये ऐसा सामने आया है कि वेक काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस को मामलों को ठीक से संभालने के लिए 70 सरकारी वकीलों की ज़रूरत है। जी हाँ, लेकिन सरकार के नए बजट में उनके लिए एक भी पद जो है वो नहीं लिया गया है। इस फैसले पर अब लोकल जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ गई है। और आपको क्या लगता है, मतलब क्या होना चाहिए? आपके जवाब मेरे साथ बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एंड फिलहाल जो शाम चल रही है ना, ये शाम के बारे में मैं बताऊँ तो ये शाम काफ़ी बेहतरीन है। एंड इस बेहतरीन शाम में अदरक वाली एक चाय एंड स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी चलेगी रहती है तो मजा आ जाएगा। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना।

नायर अपर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। जी हां, मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। धर्म के एक डम्पस्टर में छोड़े गए एक मासूम डॉगी को आखिरकार एक नया सुरक्षित घर मिल गया है। सोशल मीडिया पर लोगों को ये खबर काफ़ी पसंद आ रही है। मतलब लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि यू नो, अगर आप एनिमल को अडॉप्ट कर नहीं सकते हैं अच्छे से, उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आपने ये एनिमल पालने का शौक़ जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर इंसानों के साथ एक बार वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए वो इमोशन से बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो करिएगा मत, एंजॉय करते हैं अगला गाना।

अब सुन रहे रेडियो नायरा निर्मला नाइट्स एंड तापमान के बारे में बात करें तो तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस एंड होने वाला तापमान जो है वो 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है एंड पार्शली जो है वो सनी रहने वाला है और तापमान काफ़ी गर्म है, मतलब उमस जो है वो बनी हुई है, तापमान भी काफ़ी गर्म है। तो आपको पानी की बोतल साथ में रखना काफ़ी ज़रूरी है एंड हाइड्रेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। बट ठीक है यार, अभी कुछ ही दिन का इंतज़ार करना है, उसके बाद मौसम तो सुहाना होने वाला ही है। वैसे ही गणेशोत्सव स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो मौसम जो है ना वो कैसा भी हो भक्तिमय वातावरण तो है जो बना ही रहने वाला है। एंजॉय करते हैं अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल, कहीं जाइएगा मत।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स और अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की खबरों की तरफ रुख करने का। तो सबसे पहली और बड़ी खबर बॉक्स ऑफिस से है। इस समय सिनेमा घरों में फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर जो है वो चल रही है, जहां एक तरफ पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिर्जापुर, नॉट अ वेब सीरीज इट्स अ मूवी, मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। एंड मैं बताऊँ, इतनी फिल्म पसंद की जा रही है कि ये हफ्ते में भी फिल्म की कमाई काफ़ी अच्छी देखने मिली गई है। हर तरफ तारीफें हो रही है, हर तरफ जो फैंस हैं मिर्जापुर सीरीज़ के वो मज़े कर रहे हैं फिल्म को देख के, लिटरली मज़े कर रहे हैं। एंड गैंग्स ऑफ वासीपुर का भी एक अलग फैन बेस है, उनका भी कहना है गैंग्स ऑफ वासीपुर का कुछ तो भी यार लाओ ताकि और सोने पे सुहागा हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है।

रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स बहुत उम्मीदें थी ये सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार की फिल्म हैवान से। बहुत दिनों से ऑडियंस जो है वो इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि मूवी बहुत बुरी तरह से पीट चुकी है, लोगों को मूवी पसंद नहीं आ रही है एंड थिंग इज़ दैट ये मूवी रीमेक भी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रीमेक देखना पसंद नहीं करते, लोगों को चाहिए आजकल ओरिजिनल कंटेंट। अगर कंटेंट में आपके दम है, नया कंटेंट है, तो बस फिर आपकी फ़िल्म जीतने वाली है। फिर आपकी फ़िल्म लो बजट क्यों ना हो, आपकी PR टीम तगड़ी क्यों ना हो, आपके प्रमोशन में कमी क्यों ना हो, अगर कंटेंट है तो ऑडियंस देखती है बॉस। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल, कहीं जाइएगा मत।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड दूसरी तरफ मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। लंदन के बेम्बली स्टेडियम में इतिहास रचने के बाद दिलजीत ने भारत वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनका अगला बड़ा कॉन्सर्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है, एंड इट्स लाइक बहुत ही अच्छी बात है फैंस के लिए, इंडियन फैंस के लिए, और जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी बहुत बड़ी ये न्यूज़ है कि दिलजीत का जो कॉन्सर्ट है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है। जैसी डेट्स मेरे पास अवेलेबल होती है मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, एंड तब तक के लिए एंजॉय करते हैं अगला ही गाना। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल, कहीं जाइएगा मत।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड सोशल मीडिया पे हर तरफ काजी तौकीर छाए हुए हैं। काजी तौकीर जो बिग बॉस 20 में है एंड उनका एंटरटेनमेंट का लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि मैंने एक रील में देखा कि भाईजान यानी सलमान खान ने उन्हें कहा है कि काजी तौकीर आपने 20 साल इतनी अच्छी मेहनत करी है एंड आप डटे रहे, आपने आपके माइंड को मजबूत रखा, आपने हार नहीं मानी, तो मैं आपको ब्रेक देना चाहूँगा, एक अच्छा कॉन्सर्ट आपका मैं करवाने वाला हूँ, ऐसा सलमान खान ने उन्हें कहा है। एंड बहुत ऑडियंस को काजी तौकीर इतने पसंद आ रहे हैं, मैंने तो काजी तौकीर को तभी देखा था लाइक फेम गुरुकुल हुआ करता था, 11 बार डेंजर जोन में रहने के बाद एक बार बस सेफ जोन में थे काजी तौकीर थे, हार नहीं मानी, फेम गुरुकुल जीता और अब बिग बॉस जीतने का भी ट्राई चल रहा है। तो ही इज़ अ ग्रेट एंटरटेनर, ऐसा लोगों का कहना है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा।

वो काजी तौकीर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मतलब उनके साथ के पुराने वीडियोस डाल रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें अरिजीत सिंह एंड काजी तौकीर बाइक पर घूम रहे हैं, एंड यू नो लाइक अरिजीत सिंह का वो किस्सा मुझे याद है फेम गुरुकुल का, जब अरिजीत सिंह डेंजर जोन में थे एंड काजी तौकीर के एक वोट ने उन्होंने सेफ जोन में लेकर आए थे, जबकि काजी ने यह भी कहा था कि अरिजीत भाई आप हमारे लिए डेंजरस हो, आप अंदर आओगे तो कॉम्पिटिशन और तगड़ा होने वाला है। लेकिन जो फेयर डिसीजन था काजी तौकीर का वो उन्होंने लोगों के सामने रखा था। ये वीडियो की क्लिप भी काफ़ी वायरल हो रही है एंड काजी तौकीर छाए हैं हर तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एंजॉय करते हैं अगला एक गाना रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। कैसे हो आप सब लोग?

जो है रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, कल भी मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक का गुस्सा जो है वो फूट चुका है। उन्होंने सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी पर अपनी एक पुरानी फिल्म हीरो को जो गाना उन्होंने गाया था, उनका ये आरोप है कि उनका कहना है कि हीरो के इस गाने को ना उनको सही तरह से क्रेडिट जो है वो मिला नहीं। इस विवाद में उनके छोटे भाई और सिंगर अरमान मलिक भी अमाल मलिक के सपोर्ट में खुलकर सामने आए हैं। वेल, कभी कभी इवेंट्स में क्या होता है कि ख्याल में नहीं रहता है किसी को क्रेडिट देना चाहिए और क्या, बट ठीक है, इट्स लाइक अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ऑडियंस के सामने रखी है। 7 से 10 का ही टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स शो पर, तब तक के लिए बने रहिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा अगला एक गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल एंड गणेश फेस्टिवल की धूमधाम से तैयारी कीजिएगा। गुड नाइट, शब खैर, गणपति बप्पा।

0: Myra 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9.
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉर्डवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

तो हुजूरवाला आप जानते ही हैं कि महबूब खान कौन थे। महबूब खान वो थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जैसे कि मदर इंडिया, और ना पूछिए कितनी फिल्में उन्होंने बनाई। उनकी फिल्म का एक नगमा मदर इंडिया में, जो मदर इंडिया जो 1957 में बनी, उसमें लिया गया, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा। और आप भी समाप्त फरमाएं आज की जिंदगी में कितना ज़रूरी है ये नगमा। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा ने महबूब खान की बर्थडे के मौके पर ये नगमा भेजा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नौशाद की मौसीकी और शकील बदायूनी का कलाम। आज मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, आज मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।

दुनिया जो चाहे समझे समझा करे मुझे। अरे दुनिया जो चाहे समझे समझा करे मुझे, इंसान का रुतबा मिले अल्लाह करे मुझे। शकील बदायूनी का कलाम नौशाद की मौसीकी मदर इंडिया 1957 की ये फिल्म मोहम्मद रफी की आवाज़ में फरीदा शेख साहिबा की फरमाइश पर। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया ज्वेल थीफ फिल्म का था, 1967 में ये फिल्म बनी थी, एस डी बर्मन की मौसीकी के साथ मजरू सुल्तानपुरी का कलाम, किशोर कुमार की आवाज़ के साथ मोहतरम जनाब चंदजीत लाल जी मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर। इससे पहले वाला नगमा साहिर लुधियानवी का कलाम था, मदन मोहन की मौसीकी थी और फिल्म गज़ल की ये गज़ल थी, 1964 में ये फिल्म बनी, बहुत अच्छी फिल्म थी। नगमा ओ शेर की सौगात किसे पेश करूं, ये लता मंगेशकर की आवाज़ में था। वैसे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी दूसरा नगमा था मोहतरमा ज्योति करीर साहबा की फरमाइश पर। और अब दूसरा जो नगमा अमल के मैं कहता हूँ कि चौथा नगमा जो है पुष्पा गरीवाल का आया है सेंट लुइस से, यानी के मजूरी से, यानी मसूरी से नहीं मजूरी से आया है। और इस नगमे को हम डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त मोहतरम जनाब आदित्य धनपाल की खिदमत में। आवाज़ है जोहरा बाई अंबाले वाली की। क्या बात है, क्या ज़माना था वो। और ये फिल्म हमने सोचा है आदित्य जी आपके लिए, क्योंकि ये फिल्म रतन 1944 की ये फिल्म है जो आप इंजॉय करेंगे इस नगमे को। पानी घटा से लो अब लौट रहा है, आप जानते ही हैं कि पानी घटा से वापस आता है ज़मीन पर। अरे पानी घटा से लो अब लौट रहा है और बरसों से इंतज़ार है, कब लौट रहे हो। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

घर को सजाया, दिल को सजाया, जिगर को आज। समाज फरमाएं कि घर को सजाया, दिल को सजाया, जिगर को आज। सुनता हूँ आ रहा हूँ मैं अपने ही घर को आज। टी एन मधु की कलाम था और मौसीकी थी नौशाद की रतन वाज द फिल्म 1944 में बनी, जिसका ये नगमा था और करण शायद उसके हीरो थे। जोहरा बाई अंबाले वाली की आवाज़ में अभी आपने समाज फरमाया। मोहतरमा पुष्पा गरीबवाल ने भी इसकी फरमाइश भेजी सेंट लुइस से और साथ साथ आदित्य साहब की खिदमत में। अगला नगमा सारंधा पंडित साहिबा ने भेजा है और फरीदा शेख ने भी उसी नगमे को भेजा है, क्योंकि हमें याद दिलाया है आशा भोसले की बर्थडे का मौका। तो पेश खिदमत है आप दोनों की फरमाइशें। क्या बात है, सैलाब ने उखाड़ दी बढ़ती हुई फसल। हाय हाय, अरे सैलाब ने उखाड़ दी बढ़ती हुई फसल, काली घटा ने मुझको घटा के ही रख दिया। यू आर लिसनिंग टू गीत।

0: वक्त तन से अब जवानी की रिदा ले जाएगी। रिदा कहते हैं, आप जानते हैं, चादर को। वक्त तन से अब जवानी की रिदा ले जाएगी और घटा के बाल को काली घटा ले जाएगी। मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम, एस डी बर्मन की मौसीकी, सुजाता फिल्म वाज मेड इन 1959, जिसका ये रकम था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सारंदा पंडित साहिबा एंड साथ साथ मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा। आशा भोसले की आवाज़ में भी आपने ये नगमा समाप्त फरमाया और अगला नगमा आपकी खिदमत में मौजूद है। मगर इससे पहले चलिए कम्युनिटी कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या हो रहा है।
1: And Feroz G, several listeners have recently asked if they can submit requests and how to submit requests to Geet Bazaar. So the best way to do it is to contact us on WhatsApp. The number is area code 919-999-8192. That's +1 if you're out of the country, 919-999-8192. That's the best on WhatsApp. And make sure when you submit a request to let us know your name and where you are calling from.
2: And dear listeners, we are announcing the Urdu Majlis annual Mushaira today, Sunday afternoon. If you're listening to the morning broadcast, Sunday afternoon, there is a Mushaira, a local Mushaira featuring local artists as well as

अगर तेरी ये ख्वाहिश है करे बेदार मुझे, अगर तेरी ये ख्वाहिश है करे बेदार मुझे, किसी सुनी हुई आवाज से पुकार मुझे। खातिनो हजरात, नौशाद की मौसीकी थी और साथ साथ अनमोल घड़ी आवाज मेड इन 1946, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, नूरजहां की आवाज में मोहतरमा गीता भट्ट साहिबा की फरमाइश पर, और कलाम था तनवीर नकवी का। जब तीनों बहनों ने फरमाइश दी है तो माताजी कैसे रह जाएंगी, तो उन्होंने फरमाइश दी है तो अब पिताजी कैसे रह जाएंगे, लेकिन इनके बहाने से हम इतने अच्छे अच्छे नगमे सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब हरबदन भट्ट साहब, जो आपने नगमा भेजा है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। अच्छा ये नगमा है, कब से कफस में सीने के पंछी जो कैद है, कब से कफस में सीने के पंछी जो कैद है, सर को पटख रहा है वो उड़ने के वास्ते।

फलक पे जितने चांद तारे हैं, अरे फलक पे जितने चांद तारे हैं सभी खुर्शीद के नज़ारे हैं। प्रेम धवन का कलाम मौसीकी थी, खेमचंद प्रकाश साहब की जिद्दी फिल्म बाजवेर 1948। वाओ, लता मंगेशकर की आवाज़, ऑफ कोर्स मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की परीक्षा इम्तिहान एग्जामिनेशन, और अब मोहतरम जनाब चंदजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश सलाखों पर। जैसे कि मैं हमेशा के लिए कहता हूँ, मुकेश की आवाज़ में मेरा पसंदीदा नगमा भेजा है और ये भी याद दिलाया है कि हम कुछ देर बाद मौसम के बारे में भी बात करेंगे। या क्या बात है, अरे मौसम हसीन देख के कहना पड़ा मुझे, अरे मौसम हसीन देख के कहना पड़ा मुझे उस हुस्न का कमाल जो आया ना सामने।

0: मौसम से अगर डर है तो मौसम हंसी नहीं।
1: कहां से हो सकता है जब आप मौसम से डर रहे हैं।
0: सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। मौसम से अगर डर है तो मौसम हसीन नहीं, मौसम हसीन वो है जो छोड़े कहीं नहीं। शैलेंद्र का कलाम, मौसीकी थी सलिल चौधरी की, मधुमति वाज मेड इन 1958। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है मेरे दोस्तों तो देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। और ये देखिए कि इसके प्लाट को कितनी फिल्मों ने इनहेरिट कर लिया है, समझ लीजिए आप, या इंस्पायर किया है। गुलूकार इनके आप जानते हैं मुकेश थे, मोहतरम जनाब चंजीत लालियन, मोहतरमा कंचन लाल जी की आवाज़ में अपने नगमा समाप्त फरमाया। और हमेशा की तरह से मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, संडे को, इतवार को, रविवार को। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश, वी आर योर होस्ट सफरोस्ता जान कॉरवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। और फिर जो हमेशा की तरह एक शेर आपके लिए ताज़ा लिख कर लाता हूँ, तो ज़रा समात फरमाएं। पूछा खुदा ने भेज दूँ दुनिया में अब तुझे, अरे पूछा खुदा ने भेज दूँ दुनिया में अब तुझे, मैंने कहा ना इन दिनों मौसम खराब है।
2: And we'll be right back after these very brief messages from Radio Naira.
0: You are listening to Geet Bazaar, Radio Naira ki Peshkash.

फिल्म आजाद का नगमा 1955, जैसे कि मोहतरम जनाब राजेश शर्मा ने फरमाया था, परसेपनी न्यू जर्सी से। और अब जनाब कैसर अल जाफरी जो है फरमाते हैं कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।

0: तेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्मा।
1: रंगीनिया मौसम की बारिश का जमाना, चेहरा तुम्हारा रंगी, आंसू मुझे बहाना।

0: ये रातें ये मौसम सभी कुछ तो है। अरे ये रातें ये मौसम सभी कुछ तो है, मगर मुंतजिर हैं ये चंचल हवा के।
1: ये रात

0: दिल भी रंगीला हो गया मौसम के साथ साथ। अरे दिल भी रंगीला हो गया मौसम के साथ साथ, और छुट्टी ना ली जो तूने दिल हाथ से गया।
1: You are listening to Geet Bazaar।

या अल्लाह हर जुबां पे अल्लाह का नाम है, या अल्लाह हर जुबां पे अल्लाह का नाम है, लेकिन गुनाह मौसम सब सरेआम है।

अगर आज मौसम में सावन ना होता, समाज फरमाए कि अगर आज मौसम में सावन ना होता, नशे में ये मखमूर गुलशन ना होता।

मौसम है फिर भी मौसम, उस पर बहार का। अरे मौसम है फिर भी मौसम, उस पर बहार का। इस पर भी रंग छाया तेरे इंतजार का।

जब तक हम थे बादल ना था और सभी गुलिस्तां सूखा था। अरे जब तक हम थे बादल ना था और सभी गुलिस्तां सूखा था, और चलते चलते मुड़ के देखा मौसम सारा बदल गया। इसमें कोई शक नहीं खातिनो हजरात, वक्त ने हमारे साथ बेईमानी की। जब तक हम थे हमसे नाखुश था, जैसे ही हम गए तो अच्छा होके दिखा दिया, यानी के 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए। यही तो मौसम की बेईमानी है और वक्त की। और फिर उसके बाद ये भी कहूँगा कि दिल अभी भरा नहीं, कहना पड़ रहा है कि वक्त पानी की तरह से हाथ से निकल चुका है। 10 से 12 हम सुबह, 10 से 12 हम शाम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं हर इतवार को, हर संडे को, एवरी संडे 10 to 12 noon एंड 10 to 12 midnight we are at your service with your फरमाइशेज। और चलते चलते मैं ये भी कहूँगा कि सुरक्षा व्यास की फरमाइश आई है अहमदाबाद से, उन्होंने कहा है कि मुझे कहना चाहिए अहमदाबाद, तो ठीक है मोहतरमा सुरक्षा व्यास, मोहतरमा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फरमाइश भेजी अहमदाबाद गुजरात यानी कि इंडिया से। मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये नगमा है और देखें कि कौन सा नगमा आपने चुना है इतनी दूर से। और मैं कहता हूँ कि वक्त ने हमारे साथ बेईमानी की तो क्या हुआ, बेईमानी में भी तो मज़ा है। उर्दू शायरी में जो लफ्ज़ बेईमानी है उसका हमेशा निगेटिव कनेक्टेशन नहीं है, उसका निगेटिव मतलब ही नहीं, जैसे कि मेरा महबूब बड़ा बेईमान है या बेईमान बालमा वगैरह वगैरह। और हम भी चलते हैं कि देखें मौसम कैसा मिलता है हमको, वफ़ादार या बेईमान, और बेईमान या वफ़ादार, जैसा भी हो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बेईमान में भी कुछ मौसम का इरादा होता है। मौसम को बेईमान अब कहना बुरा तो है, सही बात है कि मौसम को बेईमान अब कहना बुरा तो है, और बरसात मधुबाला मिलवाए तो क्या कहने, मोहब्बत जिंदाबाद।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लो।

0: हे, बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दूं क्या?

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: पीजिए सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 14 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: We are delighted to bring our play.
2: जाने जाने पहचाने अनजाने।
1: Can you meet together all of you?
2: जाने पहचाने अनजाने।
1: Dedicated superstars of this play are saying जाने पहचाने अनजाने and our tour starts from 5th. In Houston, our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. Lot of cities are booked and there are certain cities which are going to be still. And if you have any issue, if you problem, please look at the number and call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
3: Anumale.
4: And lots of laughter.
3: Lots of emotions.
1: She also speaks in between. She is everybody. My name is Anupam Kher.
5: I'm Meghna Malik.
6: I'm Swarup Sampat.
7: Maya Sharma.
8: Shraddha Mandale.
9: Gomin D'Souza.
10: Gajendra Ahire.
11: Writer director Gajendra Ahire.
12: I am Vikas Rawat.
8: Yes.
1: And we are coming to America and to Canada. Rajender ji, jamado.
5: Besabri se intezar hai aap logon se milne ka.
2: Jaane pehchane USA.
1: Apne alag alag bhashaon ke log aa rahe hain. Bachus koshur, karkashur patkar.
6: जरूर आओ जो टिकट लाइन है मजा उसे
5: राम राम जी जल्दी के जल्दी मिलने आ रहे हैं थारे थे
7: अम्मी सब एक साथ आ रही थी अमेरिका अपने सबसे मिलेला
1: अलग अलग भात भात के और कोई भी
10: नक्की आ सुंदर अनुभव सुंदर सुंदर एक अनुभव घेऊंगा
6: लवकर लवकर टिकट्स बुक करा
12: प्लीज बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही
1: अरे वाह इंडिया विल बी सून इन यूएस एंड कनाडा विद द प्ले
0: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक से मुझे गाली बकते, पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो। घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: ये मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: Whenever someone says Katrina Kaif, मुझे लगता है मुझे दिमाग में बस एक ही बात आती है, like how beautiful she is, how amazingly she dance. But पता है ये दोनों fact के लिए she was pretty much very insecure. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Katrina Kaif may be known for some of Bollywood's most iconic dance numbers, but choreographer Bosco Martis recently revealed that she was once told that she was zero at dancing and should quit. That is the sign, like, you should never quit and people can't know you ever. While speaking on a podcast with Caesar, Bosco recalled Katrina's struggle early in her career and said उनका भी काफी स्टोरीज है जहां पर उन्होंने इतना मेहनत किया था, बट कोरियोग्राफर टोल्ड कटरीना आप जीरो हो डांस में तो आपको छोड़ देना चाहिए. सो शी मस्ट हैव दैट अगेंस्ट इन हर टू. फराह खान, हु कोरियोग्राफ्ड कटरीना इन जस्ट चिल एंड लेटर शीला की जवानी, रिकॉल दैट द लेटर बिकम अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द एक्टर फॉर द एक्टर. और फराह ने कहा, हाय बेचारी जीरो तो नहीं रह गई वो, शी मस्ट हैव बिन 4 or 5, बट आफ्टर शीला की जवानी शी बिकेम 9 or 10. आफ्टर दैट चिकनी चमेली, काला चश्मा. बॉस्को एंड सीजर अग्रीड प्रेजिंग कटरीनाज परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग. You know what? I can't listen any rubbish thing about Katrina. I feel like she's the prettiest. She's the best thing in the Bollywood industry. Well, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.
1: Yeah. Jab chahe

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला A1 लाइफस्टाइल A1 आई मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर।

थिंक पृथ्वीराज सुकुमरन की ये ख्वाहिश मे बी इस वक्त पूरी नहीं हो सकती. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो कुछ चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं बट पॉसिबल थोड़ी है कि हो ही जाए. लाइक हाउ पृथ्वीराज सुकुमरन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एक्साइटमेंट ओवर द आइडिया ऑफ अमिताभ बच्चन एंड रेखा स्टारिंग टुगेदर इन अ संजय लीला भंसाली फिल्म. ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन अराउंड दरिया पृथ्वीराज सेड ही वुड वॉच द फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो इफ भंसाली ब्रॉट द आइकॉनिक डुओ टुगेदर हाईलाइटिंग द टाइमलेस अपील ऑफ द लेजेंडरी एक्टर. क्या वो जया जी के बारे में भूल चुके हैं? आई थिंक ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट जया डिडंट लाइक द डुओ ऑफ अमिताभ एंड रेखा जी एंड इट इज क्वाइट जस्टिफाइड ऑल्सो बिकॉज शी इज द वाइफ मैम इवेंचुअली. वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ओनली ऑन नायरा.

यार जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: दो अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे।
1: रॉन्ग। दो अक्टूबर को गरबा नाइट है।
2: अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए।
1: गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो, एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज। अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सितंबर 7।
0: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और radio naira.com। वन बीट, वन सर्कल, वन कम्युनिटी।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

चारों दिशाओं में बस एक ही गूंज गूंज रही है और वो है गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। वातावरण जो है वो काफी भक्तिमय हो रखा है एंड यू नो इट्स लाइक बहुत ही एनर्जेटिक माहौल बना है, उत्साहित लोग हैं और आज गणेश जी का मेरे बापा का आगमन जो है वो होने वाला है। हर तरफ लोग नजर आ रहे हैं, गणपति बापा की मूर्तियां ले रहे हैं, पूजा का सामान ले रहे हैं एंड यू नो ये जो माहौल और एक तरह का जो एनर्जी बन जाती है, क्रिएट हो जाती है यूनिवर्स द्वारा गणेश फेस्टिवल में, मैं क्या ही बताऊँ, कितना मज़ा आता है ना। वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ गणेश फेस्टिवल। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल गणेश फेस्टिवल ही है एंड जो आज से शुरू हो रखा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं इस शो का पहला ये गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा नाइट्स में हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। तो 90s के कीड रिलेट कर पाएंगे। 90s के कीड हम जब इंडिया में हुआ करते थे तो गणेश फेस्टिवल के मॉर्निंग के दिन ही, लाइक सुबह सुबह उठ के गणेश जी की मूर्ति लेकर आना, डेकोरेशन का सामान एंड हर तरह। उस टाइम में ना अलग अलग झांकियाँ हम लगाते थे, अलग अलग टाइप का कुछ इवेंट क्रिएट करते थे, कंपटीशन होती थी, 10 दिन कंपटीशन चलती थी, गिफ्ट रहते थे, म्यूजिकल चेयर कंपटीशन मेरी सबसे फेवरेट कंपटीशन हुआ करती थी। एंड यू नो गणेश फेस्टिवल में सबसे अट्रैक्ट करने वाली एक चीज़ जो मुझे लगती थी कि न्यूज़पेपर हुआ करते थे, एंड न्यूज़पेपर में टू व्हीलर पर भारी छूट रहती थी, नए व्हीकल पर, फोर व्हीलर पर भारी छूट रहती थी। तो ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ परचेस कर लेनी चाहिए। ये चीज़ मुझे गणेश फेस्टिवल में काफ़ी

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स। फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा, एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन? Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, बुद्धि की देवता गणेश देवता है एंड शक्ति की देवता भी गणेश देवता है, विघ्नहर्ता भी गणेश देवता है। मतलब गणेश जी के बारे में, उनके मनमोहक रूप के बारे में कितनी बातें करूं, इतनी बातें हैं ना मेरे पास करने के लिए कि मैं क्या बताऊं। सो इट्स लाइक आज का दिन बहुत अच्छा दिन है एंड सारे लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। गणेश जी के गाने प्ले हुए गए, उसके बाद गणेश जी की आरती, उसके बाद जो मिरवनुक निकलती है गणेश जी की ढोल ताशा पथक के साथ, वो तो एक बहुत अलग टाइप का नॉस्टैल्जिया है। एंड गुलाल, ये सारी चीज़ें यू नो लाइक हर तरफ हैप्पी हैप्पी एंड हैप्पी वाला ही माहौल रहता है। गणपति बापा का आगमन हो रहा है आज के दिन, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी. आप सुन रहे हैं रेडियो नाइट्स. गणेश जी का आगमन आज हो रहा है, तो हमारे नॉर्थ कैरोलिना और इतर भागों में क्या तैयारियां चल रही है, क्या तैयारियां शुरू है बता दो आपको. तो आज का मुख्य आकर्षण, आज सोमवार 14 सितंबर को मंदिर परिसर में गणेश आगमन की जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा है उनका आयोजन किया जा रहा है. इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में रोजाना सुबह शाम आरती होगी. इसके अलावा सोनिया परचूरे का डांस इवेंट 16 सितंबर, RTPMM गणेश फेस्टिवल 18 सितंबर, भव्य गणेश महाभिषेक 19 सितंबर और 25 सितंबर को विसर्जन महाआरती का आयोजन जो है वो किया जा रहा है. और इसका एड्रेस मैं बताऊँ तो 309 एविएशन पार्क वे मॉर्सविल NCI ये रहने वाला है. तो बहुत नए नए जगहों पर, दैट इज़ अब मैं बात कर रहा था HSNC गणेश उत्सव 2026

आप सुन रहे हैं रेडियो नायर अपर निर्वाणा नाइट्स एंड नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र और युवा समुदाय भी इस बार बापा का वेलकम करने के लिए तैयार है। विशेष आयोजन टैलेंट स्टूडेंट्स यूनियन के कोस्टल बॉल रूम में 20 सितंबर 2026 को शाम 4:45 से 6:45 बजे तक विशेष पूजा रखी गई है। मुख्य आकर्षण यह है कि इस कार्यक्रम में पारंपरिक ढोल ताशा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और घर के बने मोदक व मिठाइयाँ मुख्य आकर्षण रहने वाले हैं। इसमें सभी की एंट्री फीस जो है वो फ्री रखी गई है। और बापा मैं कहता हूँ ना, बापा मतलब एनर्जी का इतना बड़ा भंडार है कि मैं आपको क्या कहूँ। सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गणेश फेस्टिवल में हमेशा ही आता है, सो नथिंग इज़ लाइक दैट। बोला गणपति बापा मोरिया। बने रहेगा रेडियो नायरा पर।